0: party and joined the NCPI. TMC General Secretary Abhishek Banerjee subsequently approached the Lok Sabha Speaker seeking their disqualification.
1: SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has hit out at businessman Mukesh Ambani and his network news channel CNBC TV 18 for spreading false news. And this after a news appeared in CNBC TV 18 alleging that a personal liability of 22,000 crore rupees was settled for 6.5 crore rupees in a case in NCLT.
0: Dr. Chandra said reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Listen in.
2: TV 18 group समूह जिसमें CNBC भी आता है, उन्होंने ही ये गलत बात पब्लिश करना शुरू की. 22,000 करोड़ सुभाष जी का कर्जा 6.5 करोड़ में NCLT ने पास कर दिया. कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक कॉमन एक मित्र ने फोन भी किया, कहा भाई ये क्यों कर रहे हो, आप गलत न्यूज देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी. उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा. अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फोन भी किया. उनको पता नहीं फोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फोन भी आ जाता है, अभी फोन नहीं आया. सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए, उसके बाद जो होगा. उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा, इन्वेस्टको नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे उनके साथ मिलके हथियाना चाहा. बट मुकेश जी प्लीज स्टॉप द रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी पर्सनली एंड माय ग्रुप. जी इज अ ग्रुप कंपनी, आई डोंट ओन एनीथिंग इन दैट. In fact, I don't own anything now after implementing this NCLT order. आप तो धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं, बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा. मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं, आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए. तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए, मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा. कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं. मुझे ये भी पता है कि वो ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं. एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं. तो प्लीज ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा. मैं आपको पूरी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सब खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखे, आप और आगे बढ़ें, पूरे विश्व में आप नंबर वन फाइनेंशियल रूप में हो, उससे मुझे खुशी होगी एक भारतीय के नाते. लेकिन ये सब भारत में करना बंद कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.
0: डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलवेज अंडरस्टूड वन थिंग.

0: SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has hit out at businessman Mukesh Ambani and his network news channel CNBC TV 18 for spreading false news. And this was after the news appeared in CNBC TV 18 alleging that a personal liability of 22,000 crore rupees was settled for 6.5 crore rupees in a case in NCLT. Dr. Chandra has said that reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Here's what he had to say.
1: TV 18 group samuh, jisme CNBC bhi aata hai, unhone hi ye galat baat publish karna shuru ki 22,000 crore Subhash ji ka karza 6.5 crore mein एनसीएलटी ने पास कर दिया। कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक कॉमन एक मित्र ने फोन भी किया, कहा भाई ये क्यों कर रहे हो आप, गलत न्यूज देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा। अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फोन भी किया, उनको पता नहीं फोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर उनका फोन भी आ जाता है, अभी फोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो

0: पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए, उसके बाद जो होगा। उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा, इन्वेस्टको नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। बट मुकेश जी प्लीज स्टॉप द रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी पर्सनली एंड माय ग्रुप। जी इज अ ग्रुप कंपनी, आई डोंट ओन एनीथिंग इन दैट। इनफैक्ट आई डोंट ओन एनीथिंग नाउ after implementing this NCLT order. आप तो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं, आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए, मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि वो ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं, तो प्लीज ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। मैं आपको पूरी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सब खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखे, आप और आगे बढ़ें, पूरे विश्व में आप नंबर वन फाइनेंशियल रूप में हो, उससे मुझे खुशी होगी एक भारतीय के नाते, लेकिन ये सब भारत में करना बंद कर दीजिए। Thank you very much. Namaskar.
1: Now, cast and filmmakers behind Coyote vs. ACME celebrated the film's release and its world premiere in Los Angeles. And the movie, which was on the verge of being shelved, finally enjoyed its first premiere. The live-action animated comedy was dropped by the studio in 2023. The film was eventually acquired by another independent production house.
2: It's got physical comedy, which I think from the world of sports entertainment, anytime you can do something physical, that translates language. So I think it's got a wide reach. I think folks from my generation and generations before me would find familiarity in the characters. I think people who are younger than me, which is a whole lot of folks, I think they're invited into a great story with good gags. It's good humor. It's good heart.
1: Now, based on Ian Fraser's 1990 New Yorker article, Coyote vs. ACME, the movie follows Wile E. as he takes legal action against ACME. He is represented by struggling attorney Kevin Avery, played by Will Forte, while John Cena portrays ACME's lawyer, Buddy Crane. Voice actor Eric Bauza, who voices several characters including Bugs Bunny, Daffy Duck, and Tweety Bird, also attended the event in U.S. And that we call a wrap to this bulletin, but news and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World this month. Do stay tuned.

0: ESSEL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has hit out at businessman Mukesh Ambani and his network news channel CNBC TV18 for spreading false news. And this was after the news appeared in CNBC TV18 alleging that a personal liability of 22,000 crore rupees was settled for 6.5 crore rupees in a case in NCLT. Dr. Chandra has said that reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Here's what he had to say.
1: TV18 group samuh jisme CNBC bhi aata hai unhone hi ye galat baat publish karna shuru ki 22,000 crore Subhash ji ka karza 6.5 crore mein एनसीएलटी ने पास कर दिया। कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक कॉमन एक मित्र ने फोन भी किया, कहा भाई ये क्यों कर रहे हो आप, गलत न्यूज देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा। अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फोन भी किया, उनको पता नहीं फोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर उनका फोन भी आ जाता है, अभी फोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए, उसके बाद जो होगा। उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा, इन्वेस्टको नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। बट मुकेश जी प्लीज स्टॉप द रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी पर्सनली एंड माय ग्रुप। जी इज अ ग्रुप कंपनी, आई डोंट ओन एनीथिंग in that. In fact, I don't own anything now after implementing this NCLT order. आप तो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, बहुत ही वो सुलझे

0: इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं। आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए, मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे, उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि वो ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। तो प्लीज ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। मैं आपको पूरी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सब खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखे, आप और आगे बढ़ें, पूरे विश्व में आप नंबर वन फाइनेंशियल रूप में हो, उससे मुझे खुशी होगी एक भारतीय के नाते। लेकिन ये सब भारत में करना बंद कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
1: Cast and filmmakers behind Coyote vs. ACME celebrated the film's release and its world premiere in Los Angeles. And the movie, which was on the verge of being shelved, finally enjoyed its first premiere. The live-action animated comedy was dropped by the studio in 2023. The film was eventually acquired by another independent production house.
2: It's got physical comedy, which I think from the world of sports entertainment, anytime you can do something physical, that translates language. So I think it's got a wide reach. I think folks from my generation and generations before me would find familiarity in the characters. I think people who are younger than me, which is a whole lot of folks, I think they're invited into a great story with good gags. It's good humor. It's good heart.
1: Based on Ian Fraser's 1919 New Yorker article, Coyote vs. ACME, the movie follows Wile E. as he takes legal action against ACME. He is represented by struggling attorney Kevin Avery, played by Will Forte, while John Cena portrays ACME's lawyer, Buddy Crane. Voice actor Eric Bauza, who voices several characters including Bugs Bunny, Daffy Duck, and Tweety Bird, also attended the event in the U.S. And that we call a wrap to this bulletin, but news and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World this month. Do stay tuned.

0: impact UAE branches of Egypt's second largest bank, Bank Misr, blocking their banking access to U.S. financial institutions. Meanwhile, American diplomats and some of their family members are beginning to return to U.S. embassies in West Asia after many were ordered to leave their posts during the early days of the war with Iran. Although most embassies are not returning to full strength immediately starting this week, the U.S. State Department has begun to lift certain staffing and other restrictions on personnel. SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra has categorically disputed several figures and claims that have appeared in certain sections of the media regarding the NCLT case. He has called in an attempt to tarnish his image and said it is being done with purpose by some people. Dr. Chandra said reports suggesting that he had personally borrowed money or had guaranteed loans worth 22,000 crore rupees are incorrect. Now here's what he had to say. Let's listen in.
1: नमस्कार. पिछले दो दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं. लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं. शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसने अपनी गलतियां मानी हैं. दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो. और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज हैं वो भी चुकाएंगे, और वो किया हम लोगों ने. वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज को फोर्स करके करवाया. फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं. अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया. बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया. उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया. तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको एक मिनट में. वो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को. हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं.